0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य

मिरी में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जुलाई महीने की 6 तारीख दिन है सोमवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे सोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री हेमंता स्वर्गिरी और सुश्री शिखाडेका, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री थुतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मिलीमीटर के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की।

0: उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से

0: आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई।

0: है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद शिव भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद शिव भक्ति भजन आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुलशन कुमार प्रस्तुत चंद शिव भक्ति भजन। इसके साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। आइए अब आनंद लेते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत का। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अरुण जमातिया, जाशुआ हलम, प्रियंका और साथी कलाकारों की आवाजों में चंद आधुनिक कोकबोरोक नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। अरुण जमातिया, जाशुआ हालम, प्रियंका और साथी कलाकारों से चंद आधुनिक को परोपनगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।
1: होया हा, होया हा।

0: अरुण जमातिया, जाशुआ हालम, प्रियंका और साथी कलाकारों की इन्हीं आधुनिक कोकबोरोक नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी जॉयस चोंगरुजू से नशा मुक्त समाज की आवश्यकता विषय पर एक वार्ता।
1: नमस्कार एवं काशी दिलेक आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात शीर्षक के अंतर्गत मैं तंजन छोएकी चेनवी तवांग कक्षा 11वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी बातचीत का शीर्षक है स्कूल जीवन के अनुभव। स्कूल वह पहला मंच है जहां अक्षरों के साथ साथ सपनों को उड़ान मिलती है। स्कूल का जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार समय होता है। यही वह समय होता है जब हम न केवल पढ़ना लिखना सीखते हैं, बल्कि अनुशासन, संस्कार, दोस्ती और आत्मविश्वास भी यहीं से सीखते हैं। जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं तो माँ की उंगली थामे डरते डरते कक्षा में प्रवेश करते हैं। आंखों में डर, मन में अनजान सी घबराहट होती है, लेकिन वही स्कूल धीरे धीरे हमारा दूसरा घर बन जाता है। वही कक्षा, वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड और वही घंटी सब हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। हर सुबह स्कूल की घंटी और प्रार्थना सभा हमारे दिन की एक सकारात्मक शुरुआत करती है। प्रार्थना के शब्द हमें देश, समाज और अपने भविष्य के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। कक्षा में बैठकर कभी गणित के प्रश्न कठिन लगते हैं तो कभी

0: की कहानियां मन को छू जाती है। विज्ञान की प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग सीखने को बेहतर बनाते हैं। परीक्षाओं का डर और परिणाम की उत्सुकता स्कूल जीवन का अहम अनुभव होता है। स्कूल जीवन की सबसे सुंदर यादें हमारे दोस्तों से जुड़ी होती है। वे दोस्त जिनके साथ हमने टिफिन बांटा, होमवर्क कॉपी किया, कभी शरारत भी की। हमारे शिक्षक कभी सख्त तो कभी अत्यंत स्नेही होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा हमें सही मार्ग दिखाना होता है। उनकी दी हुई सीख आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। मेरे स्कूल ने मुझे ऐसे अवसर भी दिए हैं जो हर विद्यार्थी को नहीं मिलते। अपने स्कूल के माध्यम से मुझे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का सुअवसर मिला। एक छात्र के रूप में मैं यह अनुभव मेरे लिए अत्यंत गर्व का क्षण था। इससे मुझे यह विश्वास होता है कि अगर हम विद्यालयी जीवन में ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़े तो बड़े से बड़ा सपना भी साकार हो सकता है। स्कूल में होने वाले भाषण, वाद विवाद, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुझे अपने प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करता है और मेरे आत्मविश्वास बढ़ाता है। एक छात्र के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि स्कूल जीवन के अनुभव मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनाता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे स्कूल की विद्यार्थी हूँ जो शिक्षा के साथ साथ अवसर और संस्कार भी देता है। कक्षा की उन बेंचों पर सपने आज भी पलते हैं। शिक्षकों के शब्दों में भविष्य के दीपक आज भी जलते हैं। स्कूल ने जो हौसला दिया वही हमारी पहचान बनती है। यहीं से चलकर हर विद्यार्थी इतिहास रचते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि विद्यालयी जीवन की यादें अनमोल होती है। इनका सम्मान करें, अपने शिक्षकों का आदर करें और अपने मित्रों के साथ बिताए हर पल को सजो कर रखें, क्योंकि जब जीवन की दौड़ में हम थक जाते हैं तो यही स्कूल की यादें हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग के 11वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी तेंजन चौकी से स्कूल जीवन के अनुभव विषय पर एक वार्ता।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: मिताप,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:35 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगवा सुनिए हीना फिल्म से मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर के आवाजों में। बोल एवं संगीत है रविंद्र जैन का।

अगला नगमा पेश है लियोन डिसूजा और सुजैन डी मेलो की आवाजों में। एक दीवाना था फिल्म के इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सवारा है AR रहमान ने।

श्रोता, हमारे संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा पेश है निर्जा फिल्म से कविता सेठ की आवाज में। विशाल खुराना द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है प्रस्तून जोशी ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:51 हुए हैं और अब सुनिए फिल्म जगत के नवगीतों का दैनिक कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए लैला मजनू फिल्म से अतीफ असलम और ज्योतिका टंगरी के आवाजों में। गीतकार इरशाद कामिल और संगीत जॉय बरुआ का।

अगला नगमा सुनिए अतीफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। रामैया वस्तावैया फिल्म के इस गीत को लिखा है प्रिया पांचाल ने और संगीत से सवारा है सचिन जिगर ने।

शांतनु मोहित्रा और शान की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे थ्री इडियट्स फिल्म का नगमा, बोल स्वानंद किरकिरे के और संगीतकार शांतनु मोहित्रा। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी।

के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नवगीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी की आवाज में। गीतकार मनोज मुंतशिर और संगीत अंकित तिवारी का।

एक पहली लीला फिल्म से भी आप सुन रहे थे कुमार का लिखा नगमा, स्वर एवं संगीत उदयर जसवाल का। अगला नगमा पेश है वीर फिल्म से राहत फतेह अली खान और सुजैन डी मेलो की आवाजों में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है साजिद वाजिद ने।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे वांटेड फिल्म का नगमा, बोल अरुण बैरव के और संगीत साजिद वाजिद का। श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए तमाशा फिल्म से अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में। ए आर रहमान द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

तमाशा फिल्म की इस नगमे के साथ ही फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं अब सुनिए शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ख्याल। राग है जय जय बंती।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे जय जय वंती राग पर उस्ताद बिस्मिल्ला खान और साथियों से ख्याल। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: हैं। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए वे इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नाहरलगुन में वार्ड संख्या 16 स्थित लांपिया में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड का आधिकारिक उद्घाटन किया। तवांग पुलिस ने असम पुलिस के सहयोग से आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जाँच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य से अधिक तापमान की चेतावनी के मद्देनजर ईटानगर कैपिटल रीजन प्रशासन ने लू को लेकर एडवाइजरी जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इसी कड़ी में वे इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्रियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्रियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक

0: सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नाहरलगुन के वार्ड संख्या 16 स्थित लांपिया में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड का आधिकारिक उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि डैमसाइड ब्रिज से लेकर कंकड़ नाला तक फैली 4 किलोमीटर लंबी सीमेंट कॉन्क्रीट सड़क एक राष्ट्र एक संबंधित और प्रबल समर्थक दूरदर्शी नेता डॉ. मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस आधारभूत संरचना का समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए ईटानगर नगर निगम IMC को और लोक निर्माण विभाग PWD की सराहना की है। अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग पुलिस ने असम पुलिस के सहयोग से आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी से जुड़े 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। इन मामलों में भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच तवांग पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक नियांगू द्वारा किया गया। पुलिस अधीक्षक तासीदारांग के पर्यवेक्षण में तवांग पुलिस की एक टीम ने लखीमपुर पुलिस के सहयोग से असम में आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बीच पुलिस अधीक्षक तासीदारांग ने असम पुलिस विशेषकर लखीमपुर और सोनितपुर जिला पुलिस टीमों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के समन्वित अभियान अंतर्राज्यीय पुलिसिंग को मजबूत करते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश पुलिस एवं असम पुलिस के बीच प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य से अधिक तापमान की चेतावनी के मद्देनजर ईटानगर कैपिटल रीजन प्रशासन ने लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और तेज गर्मी के दौरान अधिक शारीरिक श्रम पर परहेज करने की अपील की है। शरीर की पानी में कमी आने से बचाने के लिए ORS, नींबू पानी या छाछ जैसे पेय पदार्थों के सेवन की भी सलाह जारी की गई है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाकर शरीर का तापमान कम करने, तरल पदार्थ पिलाने और बिना देरी किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने को कहा गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को पेयजल उपलब्धता कराने, जागरूकता फैलाने तथा बच्चों, बुजुर्गों और खेल में काम करने वाले श्रमिकों को विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रिक्स देशों की मादक पदार्थ निरोधी एजेंसियों के प्रमुख ने बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हुई। गृह मंत्रालय ने अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा है कि ब्रिक्स के विस्तार से मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता और मजबूत होती है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क, टारगेटेड प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए साइको एक्टिविटी पदार्थों तथा समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं पर पार संचालित होना बन रहे हैं। ऐसे में इन्हें प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्क नेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि राष्ट्र स्तर की 9 प्रमुख सहकारिता समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंच का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने

0: बताया कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया है कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 लोग घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन को इस्तेमाल किया है। पोदिल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी के संकेत मिल रहे हैं और रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड और 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया है क्वार्टर फाइनल में और जगह पक्की कर ली है। ब्राजील की दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड ऑफ 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to Indonesia, Australia and New Zealand will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. The Prime Minister said his vision to Indonesia visit will His visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 and follows President Prabowo's state visit to India as the chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan temple complex in Yogyakarta with President Prabowo. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia comprehensive strategic partnership through discussions on defence and security, trade and investment, education, mobility emerging with critical technologies, sports and people-to-people ties. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Addressing the 5th foundation ceremony of Ministry of Cooperation, Shah said that the ranking framework has been announced to recognize the 5 best performing cooperative societies in every region. Home Minister Shah lauded the Ministry of Cooperation for bringing change in the lives of millions of people.

Kyo Never,

से मचत जेकब सुमक देवका ड्रेव नखले सबसो कहीम ने नाने सिलन खुशियाब नरेंद्र मोदी से शुंग्रे सेकुरगा फेबो नदाचे इंडोनेशिया का फेपिया जगरक मिसिनंग देवका थोटे नौ हिनुनिंग इंडोनेशिया को सिंजिन प्रभव देवका योग्य कलवा सने का शिमुनो प्रम बनन लगंग फेबजुगिंबर इंडोनेशिया गुक्तोर सिलुनसी ऑस्ट्रेलिया गुक मेलबोर्न का फेपिया ऑस्ट्रेलिया के कप गुक सिलुन एंथोनी एल्बनिस देवका सोंदे चोया सुंग्योप चोंले जेमो शेयन निंग ट्रुचकोर ड्रेदर नयुक्सी मचत ऑस्ट्रेलिया के कप का सुकन जगर्ग मिरिक न देवका थोटे नयुक्किंबर शुंग्रल सिकुर शुक्ताचे सिलुनसी न्यूजीलैंड को सिलन क्रिस्टोफर लक्सन सी फिपसु शिशु ले तीनिया न्यूजीलैंड के खप को गेसा ऑक्सलैंड का फिपिया सिलन देव का पेंजोनिंग छोलेकोर ड्रेडर नयुक निसुने वे नंसिन लुंचिन निंग कॉर्पोरेशन लैंकंग लुंचिन गोजेप अमिशा सी क्यार्चुनिंग जिंक्यों नमदा रसुले तीनिया जगर कॉर्पोरेटिव जेद यागेतम कदों नमने नाने थेंग लेंगे मक कॉर्पोरेशन लंकंग चुगुक जगुकप का कुजब श्यासी सने छचंगा कॉर्पोरेशन डाक्ता जित दम्यक थोका छर्शी चुसु नौने नंगोनें नपतमत लेंगे चुर कॉर्पोरेशन लंकंग सी जगर मिसी योर्क मिसी युवा नमदा थोंग नमने नाक्चे नंगोंबर ngade maharashtra gu mumbai ning konkar sanega monsoon namcher thamsogosi sanega chulorasu kere bagoning kimyer bagayusi machat jalam mekhorning namtu junjuko kange thamrasu number sanega datiye namcher dechamunu shuktam choktong nausi shungsi getam munu inna dadak teka thorsu mugyun benge shatu number ngade chikyap lunchin Devendra Fadnavis se SDRF ka phepya kyaship nao nesunni. Gyakar kandamshi lekhung si dono ngade Gujarat sane konkan Goa Madhya Madhya Pradesh ning Chhattisgarh ka namchar tham ning sane shoti ka namchar deshamunut tham chomak ni nge shatni. Desh naling Russia si Ukraine kuk kesa Kiev ka ballistic missile mishukpurdas thongosi nyungthale michi sotoning mi khenegro natpishung nesumni russia si uth missile mishukpurdasu turki ga chodok nato chokpak chongdi getham chogolena thongoning chongdega sinjin donotambe phebyuk rebu number Ukraine kuk nam mami si utskap ka Russia si ballistic missile, cruise missile ning drone beche thoni nye chatni. FIFA World Cup zemur dandur ka desh England ning Mexico nek put ka Mexico City kuk Azteca nyego zemur thanga shanya England si gol sum poto ning Mexico si gol nai potya England si Mexico shirvato knesuni. उच्च डंडुचु तयुसी इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल डंडुरगा होंगुक नेसुलनि संगिन उत्तमचे दशुक नेसुल खाचनशो शुसुपनदुस संगिन दा उचु शुचे दश उर्गेलिंगोनबा जवकोटिं चुशिप गोंगलो कुबजु गोजिका फेबुक कुइ थुंगकर दुचिन सुंगसु शुसुक रेडियो रिपोर्टि सनासा उच्च रेडियो रिपोर्ट रिकॉर्डिंग यकन तंजन दर्जे इनोनिंग रेडियो रिपोर्ट चेकन लुंगठिंग कंग तवंग हेड ऑफ प्रोग्राम कुजब टेसी दुजे इंबर कुठिंग चुपचिपा जेवा तंजन ग्याचो चिलो गा याना देश चिलो नितों खलु ग्रोलोक चिंदा डुक पक्तरिक ग्रोले गुमलो कुपचुक होचिक फेबुक

इजिक शुचे अरुणाचल पब्लिक स्कूल तवांगक लपटुप नंगसी मनप समजब्रो लासा नरबु फुयंबुर

मीडियम वेव की मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए श्रोताओं, पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर मोनपा में कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए तवांग मठ के रिम्पुछे जी और भिक्षु गणों से चंद बौद्ध भक्ति भजन। तत्पश्चात श्रीमती सतिम जांगमू और साथियों से भी सुनिए चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में सुनिए कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के बागवानी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी से क्रूसीफेरी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक खेती के विषय पर हुई भेंटवार्ता।

वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए। रेफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक और अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:30 पर आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए वीर दारा फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशो पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 7 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए लामा लोपसांग त्सेरिंग और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक आसामिया नगमों का आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए एडवोकेट रिंचिन वांगमू जी से CDPO तवांग के अंतर्गत स्थापित वन स्टॉप सेंटर तवांग के कामकाज प्रणाली पर एक जागरूकता संदेश। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए डियर जिंदगी फिल्म से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी, जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन, चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई, दिल धड़कने दो फिल्म से सुनिधि चौहान और हिचकी फिल्म से अरिजीत सिंह के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में सुनिए सिम्बा फिल्म से राहत फतेह अली खान, अजीज कौर और तनिष्क बख्जी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से विशाल ददलानी, पायल देव, किशोर कुमार और मारियान, नोटबुक फिल्म से कमाल खान, सत्यमेव जयते फिल्म से अतीफ असलम और तुलसी कुमार, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान, जुग जुग जियो फिल्म से कनिष्क सेठ और कविता सेठ, टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा, बूथ वन फिल्म से अखिल सचदेव और मनशील गुजरल और ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिफाली आलवरेज की आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुल्कू तिनजिन ग्युरमे रिम्बुचे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग पर आधारित शिक्षाओं का शेष भाग कल शाम 5:00। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम दांगपोक समा में आनंद लीजिए श्री दुर्जित सिंह और साथियों से चंद याक नृत्य पर आधारित मोनपा लोकगीत। लेरिमसेडा शाम 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदुन लेरिम में सुनिए सिंगसोर मठ के आनी थुतन वांगमू और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए मोन्युल विद्या निकेतन विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा की विद्यार्थी श्री थुपतन तंजिन से एक अंग्रेजी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही

से मैं आनंद लीजिए एक रिश्ता फिल्म के चंद नगमे कल शाम 7:11 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग कल शाम 7:25 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए सैम बहादुर फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा।

0: सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India. He said the government is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee with a 2-year national celebration. The Prime Minister said this celebration began on July 6th of last year and will continue until July 6th of next year.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta in Indonesia today, beginning his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora, featuring traditional Indian and Indonesian cultural performances. This is Prime Minister Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President and review the progress made in the partnership. The Prime Minister will also travel to cultural and historic city of Yogyakarta, where he will visit the Prambanan Temple Complex. On the second leg of the visit, Mr. Modi will travel to Australia from 8th to 10th of this month. Mr. Modi will visit New Zealand on the third and last leg of his three-nation visit. The Department of Consumer Affairs has amended the Legal Metrology General Rules 2011 to substantially reduce the requirement of standard weights for the verification of high-capacity weighing instruments by introducing a scientific, repeatability-based verification approach. Under the revised provisions, the mandatory quantity of standard weights required before substitution with constant loads has been reduced from 50% of the maximum capacity to 20%, while maintaining the prescribed standards of verification accuracy and reliability. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari today chaired a review meeting of the National Highways Logistics Management Limited and assessed the project-level progress of multimodal logistics parks, ropeways, intermodal stations and wayside amenities being developed across the country. In Jharkhand, continuous rainfall has affected normal life in Ranchi and several other districts of the state, leading to waterlogging in many urban and rural areas. IMD has issued a yellow alert for 2 days, forecasting heavy rain, thunderstorms, lightning and strong winds with speeds

0: of 40 to 50 kilometers per hour in several parts of the state. During the last 24 hours, the highest rainfall of 79.8 millimeters was recorded at Nimdi in Saraikela, Kharsawan district, while Rachi received 37 millimeters of rain. People have been advised to avoid unnecessary travel during adverse weather conditions and to stay in safe locations. The appeal by the people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK to the Indian government for assistance underscores the depth of the crisis unfolding in the region. Protests have continued across POJK for more than a month. An official said that the nature of the appeal is particularly worrying as people in POJK are seeking medicines and essential food supplies from India. This reflects the gravity of the humanitarian situation in the region. On the instructions of Field Marshal Asim Munir, the Pakistani establishment has blocked the supply of ration and medicines to the region for the past 20 days. The people are facing acute shortages of food, while those injured during the protests are being denied essential medical care. Many residents are now attempting to flee POJK and cross into India. And in FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण। कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण में आज आप सुनेंगे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के बागवानी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी के साथ क्रूसीफेरी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक खेती के विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दर्जी ड्रेमा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हमने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी को। तो डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी जी, आपका हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
3: तवांग के किसान बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार।
2: जी, तो श्रोताओं, आज हमने कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण के अंतर्गत डॉक्टर अभिमन्यु जी के साथ चर्चा करने के लिए एक विशेष विषय चुने हैं, जो कि है कोल क्रॉप्स, जिसे हम गोभी वर्गीय फसलें भी कहते हैं। तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, मैं सबसे पहले आपसे विस्तार से ये जानना चाहूंगी कि कोल क्रॉप्स किसे कहते हैं।
3: बॉटनी के नजरिए से देखें तो बहुत सारे सब्जियों का अलग अलग फैमिली में क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, उनका प्लांट्स की हाइट के अनुसार, उनका फ्लावरिंग पैटर्न क्या है, इस हिसाब से। तो इसमें कोल क्रॉप्स में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ये प्रमुख सब्जियां कोल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं।
4: जितने भी गोभी से मिलते जुलते सब्जी हैं, उनको कोल क्रॉप्स कहते हैं।
3: जी,
4: अब हम इसके बारे में ये सबसे पहले शुरुआत से जानेंगे कि इसकी नर्सरी डालने का क्या सही समय रहता है, और उस समय जब हम नर्सरी डालते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
3: जी, बहुत ही जेन्युइन और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। नर्सरी तैयार करते समय हमको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला चीज, नर्सरी की मिट्टी जो है, जिसमें हम गोभी वर्गीय फसलों के बीज को लगाएंगे, एकदम पतली भुरभुरी होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा बालू का अंश भी होना चाहिए। बालू का अंश होने से क्या होता है कि मिट्टियां थोड़ा सा भुरभुरापन जो है ज्यादा हो जाता है, सीड जर्मिनेशन और नर्सरी उगने में उनको सहूलियत मिलती है। ये ध्यान देते हैं कि रोग और खरपतवार नहीं हो, ताकि हम जो नर्सरी उगाएंगे हेल्दी हो, और जब हमारी नर्सरी हेल्दी होगी तभी हमको आगे अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये चीज है। फिर नर्सरी में थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए। मान लीजिए बारिश हो गया, हम पॉली हाउस में नर्सरी लगाए हैं, पॉली हाउस में बारिश तेज आ गई, कहीं से पानी भर गया, तो एक स्लोप होना चाहिए सर्टेन परसेंटेज से, ताकि स्लोपी नर्सरी होने से पानी निकल जाए। वाटर ड्रेनेज की मतलब सुविधा होनी जरूरी है। इसके अलावा हमको क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, बीज बोने से पहले नर्सरी में हम सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, या सड़ी हुई गोबर नहीं हो तो कंपोस्ट किसान बंधु तैयार करते हैं, जैसे कि खेत का जो भी वेस्टेज है, ग्रीन वगैरह, घास पात, उसको एक गड्ढे में सड़ा करके कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसको भी डाल सकते हैं। बीज बोने से 10 दिन पहले अच्छे से मिला के हम अपनी नर्सरी तैयार कर लेते हैं। नर्सरी में जो हम पौधे लगाएं उसमें कुछ रोग न पनपे, उसके लिए हम दो तरीका अपना सकते हैं, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, केमिकल वाला। ऑर्गेनिक तरीके में कुछ बायोपेस्टिसाइड होते हैं।

0: है, मतलब जैविक तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से बीमारी को रोक सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, ऑर्गेनिक तरीका है रोग को कंट्रोल करने का। तो ट्राइकोडर्मा को क्या करते हैं, इसमें अगर हमारी जो नर्सरी की साइज के अनुसार ट्राइकोडर्मा का यूज हमको करना चाहिए। हम नर्सरी की खेत तैयार करते समय हम क्या कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा पाउडर को घोल कर लें। इस दर से एक इस रेट से हम मिट्टी में स्प्रे करके अच्छे से उसको नर्सरी में होने वाली बीमारी रुक जाएगी। दूसरा है केमिकल तरीका। चूंकि नर्सरी में केमिकल तरीका अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे समझ रहे हैं कि तवांग में लोग ऑर्गेनिक पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी केमिकल का देखें डोज सोर्स टाइम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा डोज क्या है केमिकल का, ज्यादा डोज नहीं देना है, एक रिकमेंडेड डोज देना है। किस सोर्स से ले रहे हैं, हमारा जो केमिकल यूज कर रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, किस समय में हम अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज कॉपर फंजीसाइड्स होते हैं, जैसे कि थायराम है, कैप्टान है या बाविस्टीन है, इनका भी मात्रा 2 ग्राम को 1 वर्ग मीटर में 2 ग्राम केमिकल पर्याप्त होता है। 2 ग्राम तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो इसको थोड़ा सा राख में या बालू में मिला के हम जहां नर्सरी लगाएंगे उसमें अच्छे से वो कर सकते हैं। इन दवाओं का प्रभाव 20 से 25 दिन तक होता है, रेसिडुअल इफेक्ट जो कहते हैं, उसके बाद इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। हमारे हेल्थ पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, चूंकि नर्सरी का जो पौधे लगाते हैं उनको उगने में यहाँ ठंडा है तो यहाँ 40 से 45 दिन लग जाता है। तो हम चाहे ऑर्गेनिक भी जा सकते हैं, बायो तरीके से भी जा सकते हैं। इसके अलावा हम बीज कैसे बोएं ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोभी वर्गी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली के बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनको 5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, एक बीज से दो बीज के 5-5 सेंटीमीटर के लाइन में, और अधिकतम 1 सेंटीमीटर की गहराई, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा नहीं करते हैं, इससे कम ही रखना चाहिए। लाइन से हमको अच्छी तरह से नर्सरी लगा के उसमें हमको बीज बोना है। फिर बीज बोने के बाद हम सड़ी हुई गोबर की खाद अधिकतम 1 सेंटीमीटर मोटी परत बीज के ऊपर अच्छे से फैला दें तो बीज कवर हो जाएंगे। फिर नर्सरी में बीज हम डाल लिए गोभी वर्गीय का या कोई भी सब्जियों का, उसके बाद हमको नमी देना जरूरी, पानी सिंचाई, पानी देते समय अगर हम तेज धारा से होगा तो सीड छोटे हैं बह जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि स्प्रिंकलर मतलब फवारा से पानी देना चाहिए, नमी मेंटेन करना चाहिए, तभी हमारा जर्मिनेशन अच्छा होगा।
1: जी जी जी, क्योंकि आपने जिस तरह के जो तरीका बताए थे जब बीज बोते समय क्या क्या करनी चाहिए, ये सारे चीज अगर हम अच्छी तरह से अपनाए तो आगे जाकर जब फसलें बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद जो समस्याएं आते हैं कीड़े लगते वो नहीं होंगे शायद, है ना। और जैसे आपने बताया ये जो कोल क्रॉप्स या जिसे हम गोभी वर्गीय फसलें कहते हैं, ये जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं, और जब हम पॉली हाउस में अगर बनाए नर्सरी तैयार करें तो वो शायद और नाजुक हो जाते हैं, तो बाहर जब ट्रांसप्लांट करने के लिए लेकर आते हैं तब किस तरह की ध्यान रखनी चाहिए,
0: कैसे हम ट्रांसप्लांटिंग अच्छे से करें ताकि हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो। इसके पहले हम एक चीज और ऐड कर रहे हैं, इनकी प्रमुख किस्में क्या है, जो वैरायटीज तो बहुत सारी हैं, कुछ सर गवर्नमेंट के रिसेंट इंस्टीट्यूट द्वारा भी डेवलप की गई है और कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी। तो ये तवांग के कंडीशन में अलग अलग सब्जियों की, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी की किस्में ही है, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली द्वारा विकसित है। गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता, पूसा ड्रम, ये पत्ता गोभी कैबेज की प्रमुख महत्वपूर्ण किस्में है जो कि ज्यादा उत्पादन देती हैं। इसी तरह फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, इसमें अगेती किस्में है जैसे कि जिनको यहाँ हम जनवरी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दिसंबर टू जनवरी, कुछ मेन सीजन की किस्में हैं, कुछ लेट होने वाली किस्में हैं। तो फूल गोभी की अर्ली किस्में जो अगेती किस्में है, पूसा मेघना, पूसा कार्तिकी और पूसा दीपावली, ये अर्ली अगेती किस्में हैं, आगे इसको लगा सकते हैं। और मेन सीजन की किस्में हैं जो पूसा शरद है, पूसा अगहनी है, और थोड़ा देरी से होने वाली लेट वैरायटी जो फूल गोभी की है, इसमें पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2 ये हैं। सिमिलरली ब्रोकली, यहाँ ब्रोकली भी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, तो ब्रोकली की किस्में है पूसा ब्रोकली KTS1, दूसरा है ग्रीन हेड और रॉयल ग्रीन, ये 3 किस्में ब्रोकली की बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आ गया हम नर्सरी के बाद कैसे इनका रोपण करें। तो नर्सरी हमने लगा लिया, बीच बीच में हमको नर्सरी में कुछ खरपतवार जो वीड्स होते हैं उनका देखभाल करना चाहिए, बीच बीच में हमको पानी देना चाहिए ताकि हमारा नर्सरी अच्छे से हो जाए। एक्चुअली क्या होता है, जहाँ गर्म जगह है वहाँ गोभी वर्गी नर्सरी जो है 25 से 26 दिन में तैयार होती है, लेकिन तवांग चूंकि ठंडा जगह है, यहाँ हमने प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि 45 दिन के आसपास में नर्सरी तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम है, जमाव ही 15 से 18 दिन में यहाँ जर्मिनेशन हो रहा है, बीज का जमाव हो रहा है। इसके बाद हमको 4 से 5 पत्ते वाले पौधों को ही सिलेक्ट करना चाहिए मेन खेत में रोपने के लिए, लगाने के लिए। प्लस उसमें देखना चाहिए अगर कोई कमजोर

0: पौधा है तो उसको अवॉइड करें, हेल्दी पौधों को लें। और जब हम नर्सरी से पौधों को उखाड़ना है उसके एक दिन पहले हमको उसमें पानी भर देना है। पानी भरने से क्या होगा कि उनकी जो जड़ें हैं ना, रूट जो थोड़ा नरम हो जाएगा। तो जब हम पौधे उखाड़ेंगे मेन खेत में ट्रांसप्लांट के लिए, तो उनका जो रूट सिस्टम है जड़, वो टूटेगा नहीं, अच्छे से हमारा वो पौधे लगाने से लग जाएंगे, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। फिर प्लांटिंग डिस्टेंस की बात आती है कि कितना दूरी में हमको इनका रोपाई करना चाहिए, प्लांटिंग करना चाहिए। कैबेज देखिए 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट 30 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कैबेज के लिए, पत्ता गोभी के लिए पर्याप्त है। कॉलीफ्लावर में कुछ अगेती किस्में हमने बताया, कुछ मेन किस्में हैं। तो जो अगेती किस्में हैं अर्ली, उनका चूंकि प्लांट साइज छोटा होता है, तो उनके लिए 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर रो टू रो और 45 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, जो मेन क्रॉप है इसको 60x60 सेंटीमीटर पे लगाना चाहिए। ब्रोकली के लिए भी 60 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर, इतना स्पेसिंग करने से उनका ग्रोथ वगैरह अच्छा होता है। ज्यादा दूर दूर कर देंगे तो हमको खरपतवार वीड्स ज्यादा उगेंगे, ज्यादा पास पास कर देंगे तो उनमें न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होगा, सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा, तो भी हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा।
1: और न्यूट्रिएंट जिसे हम पोषक तत्व कहते हैं, और उसकी प्रबंधन के लिए विशेष रूप से क्या करना चाहिए, और जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं ना, तो उसकी क्या भूमिका रहती
0: जी? देखिए, चूंकि हम लोग थोड़ा सा पहले भी हिंट जिक्र किए थे कि यहाँ ऑर्गेनिक है, हम किसान जैसे केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया डीएपी के प्रयोग से थोड़ा हिचकते हैं लोग, वैसे यहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा पर्याप्त है, जीवांश की मात्रा पर्याप्त है। तो हमको फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब कि गोबर की खाद हो या हमारा जो भी खरपतवार है वीड्स है, उनको अच्छे से सड़ा करके हम उनको तैयार करके इस खाद को सड़ा हुआ गोबर की खाद को, एक हम रूल है कि 1 kg पर स्क्वायर मीटर, इस दर से हम अपने पॉली हाउस में या मेन फील्ड में इनका फार्म यार्ड मैन्योर का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हमको रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज है, इसके अलावा हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पीएसबी मतलब फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका कल्चर आता है। तो क्या करते हैं कि जैसे एजोटोबैक्टर है, नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है, पीएसबी जो है फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। इन सब का क्या है कि लिक्विड फॉर्म आता है, तो 1 लीटर पर एकड़ की दर से, या अगर हम ऐसे कहें कि स्प्रे करना है मान लीजिए प्लांट पर, तो इनका जो है कि 1 ml पर लीटर वाटर, इस डोज में इनका हम स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी फसल जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उनको लगाने के 20 से 25 दिन बाद एक स्प्रे कर सकते हैं, दूसरा स्प्रे 40 दिन बाद कर सकते हैं, 40 से 45 दिन बाद। तो दो स्प्रे कर देंगे प्लस शुरुआत में फार्म यार्ड मैन्योर लगा देंगे, तो इससे हमारा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी गोभी वर्गीय फसलों को। एक और आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर, गोभी वर्गीय फसलों में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे फूल गोभी में स्पेशली नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी एकदम पतली रस्सी के समान हो जाती है, उनका जो फूल है अच्छे से नहीं बनता है। इसके अलावा फूलगोभी और ब्रोकली में एक और समस्या आती है, बोरान की कमी से जो हमारा फूल है, टेक्निकली कर्ड बोलते हैं, फटने लगता है। तो ये विप्टेल वगैरह ये सब डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर आता है पाउडर फॉर्म में, इनका हम छिड़काव कर सकते हैं। इनका क्या है कि 0.1% सॉल्यूशन, मतलब 0.1% घोल। किसानों को आसान भाषा में समझाने कि मतलब 100 लीटर पानी में 100 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर घोल के आप अपने गोभी वर्गीय फसलों पर इनका छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। ऐसे ही टमाटर में है, टमाटर में भी फल फटने लगते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर की कमी से। बहुत सारे सब्जियों में अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, वो बताता है कि सब्जी बता रही है, प्लांट्स बता रहे हैं कि हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो इनका कब छिड़काव कर देंगे, 2 छिड़काव काफी है। गोभी वर्गीय फसलों में भी मान लीजिए 30 से 35 दिन के बाद 1 छिड़काव कर दीजिए, 1-15 दिन के बाद अगला छिड़काव कर दीजिए, 45 दिन बाद 31 दिन बाद 45 दिन बाद। तो इस प्रकार से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर की कमी को भी पूरा कर सकते हैं
1: जी। क्योंकि मैंने देखे कि फूलगोभी को ही ले तो फूलगोभी के जो पत्ते होते हैं शुरुआत में वो तो बहुत सुंदर तरीके से खिलते हैं, पर जब फूल लगने की बात आते हैं तो उसमें शायद पोषक जो तत्व है इसकी कमी की वजह से बीच में या तो फिर बहुत छोटे फूल खिलते हैं या फिर फूलगोभी के फूल के बीच में से और एक अलग से
0: वही वही खिल जाते हैं, उसको इसलिए होते हैं। डिजीज नहीं, डिसऑर्डर, न्यूट्रिएंट्स की कमी से कुछ स्पेसिफिक अलग प्रकार की रचना बन जाती है, तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। वो नाइट्रोजन की कमी से होता है ऐसा फूलगोभी में स्पेशली।
1: तो पोषक तत्व की जो जितने भी तरीके हैं इसे अच्छी तरह से अपनाएं तो फिर फूलगोभी में जो ये समस्या आती है
0: वैसे इनका मिलेंगे, वृद्धि और विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और हमको अच्छी यील्ड, अच्छी उपज प्राप्त।

0: होगी।
1: ये तो रही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को लेकर, तो वीड कंट्रोल जो खरपतवार है इसके मैनेजमेंट किस तरह से करनी चाहिए?
0: खरपतवार जो मतलब वीड्स किसे कहते हैं, जो हम मेन फसल लगाए हैं उनके अलावा कोई भी पौधा हमारे खेत में या हमारे पॉली हाउस में उगे वो वीड्स है, वो खरपतवार है, वो अनावश्यक है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम मेन फसल लगाने के बाद हमको हाथ से ही मैनुअल वीडिंग करनी चाहिए, खरपतवार की निराई गुड़ाई हाथ से एक बार लगाने के 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए, एक 10 दिन बाद फिर दूसरी निराई गुड़ाई वीडिंग मैनुअल वीडिंग कर सकते हैं। हम केमिकल का भी स्प्रे

0: ये जो तरीके होते हैं खेत में काम करने की, सब्जियां उगाने की, तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हमारे पारंपरिक तरीके होते हैं तो इसी को लेकर काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है, वैज्ञानिक जो तरीके हैं इसे अपनानी चाहिए कि नहीं, और वैज्ञानिक तरीके को अपनानी चाहिए तो इसकी क्या क्या फायदे हैं?
1: समय के साथ समाज बदल रहा है और समाज के साथ साथ हमारे बहुत से खेती करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर हम पारंपरिक तरीके से करते रहेंगे तो हमको उपज कम प्राप्त होगी, उपज प्रोडक्शन कम प्राप्त होगा, चाहे सब्जी हो, फल हो, फूल हो, दाल वाली फसल हो, तेल वाली फसल हो, दलहन तिलहन बोलते हैं किसी को भी। अभी हम लोग सब्जी में डिस्कस कर रहे हैं, तो जैसे कि पुरानी सब्जी की किस्में हैं उनका पैदावार कम होता है, नई नई किस्में वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं उनको, उन पर रिसर्च कर करके, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा मिल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारा उसमें और क्वालिटी वैरायटी में ट्रैट्स डेवलप करके उन वैरायटीज को रिलीज की जा रही है, जैसे कि रोग रोधी किस्में, कीट रोधी किस्में, और ज्यादा ठंडा में भी सर्वाइव करने वाले किस्में, ज्यादा गर्मी है उसमें सर्वाइव करने वाले किस्में, कोई साल्ट अफेक्टेड एरिया है तो साल्ट टॉलरेंट किस्में। हमको वैज्ञानिक तरीके से खेती करना ही पड़ेगा ताकि हमारी लागत तभी कम हो पाएगी। पारंपरिक तरीके से हम करते रहेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, खेती की लागत भी बढ़ेगी, तो हमको मुनाफा कम होगा, किसान घाटे में रहेगा। तो किसानों के ओवरऑल फायदे के लिए, हमारे इतना ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है उसको उसका पेट भरने के लिए, चाहे वो अनाज के रूप में हो, तेल के रूप में हो, दाल के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो, हमको नई वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक खोजों को अपने खेती में अपनाना ही पड़ेगा ताकि हम अधिकतम प्रोडक्शन के साथ साथ हम अधिकतम आर्थिक रूप से किसानों को लाभ भी दे सके।
0: किसी के पास एक ही किचन गार्डन या एक ही बगन होते हैं, वो एक के बाद एक फसल उगाते रहते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? मिट्टी को कितने समय के लिए खाली छोड़नी चाहिए?
1: मिट्टी को खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
0: अच्छा।
1: क्यों हम मिट्टी को खाली क्यों छोड़ते हैं? ताकि उसमें कुछ समय तक मिट्टी खाली रहेगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स अपटेक पौधे नहीं करेंगे, मिट्टी का हेल्थ अच्छा रहेगा। एक चीज ये है, न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो हमारे पास तमाम ऑप्शन है। हम मिट्टी को ऑर्गेनिक तरीके से उनका एनरिच कर करके हम उसमें ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर, काउडंग मैन्योर को सड़ा के, वर्मी कम्पोस्टिंग करके मिट्टी को हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। साल भर हम अपना कुछ न कुछ अपना किचन गार्डन से उगा सकते हैं। उसके लिए सबसे आवश्यक वस्तु है क्रॉप रोटेशन करना। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? सपोज इस साल हम गोभी लगाए इस समय, तो नेक्स्ट ईयर इस समय में हम गोभी नहीं लगा के टमाटर लगा लें, आलू लगा लें। क्या होगा क्रॉप रोटेशन से कि जैसे कि कोई क्रॉप ज्यादा न्यूट्रिएंट लेती है तो नेक्स्ट ईयर हमको उस फील्ड में मिट्टी से कम न्यूट्रिएंट लेने वाली फसल को लगाना चाहिए। मान लीजिए एक ही क्रॉप लगातार लगाने से उसमें कुछ बीमारियां लग रही हैं, उस कीड़े लग रहे हैं, तो वो पार्टिकुलर वो मिट्टी में कई सालों तक रह जाते हैं। तो हम क्रॉप रोटेशन करने से अगले साल फिर वो कीड़े को वो खाना नहीं मिल पाता, वो फसल नहीं मिल पाता है, तो उनका अटैक ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो क्रॉप रोटेशन से हमारा मिट्टी का हेल्थ भी हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब ज्यादा न्यूट्रिएंट के बाद कम न्यूट्रिएंट वाली फसल ले सकते हैं।
0: भारत सरकार द्वारा सोयल हेल्थ कार्ड नाम का एक योजना जारी किया गया था, तो उससे किसानों को क्या फायदे होते हैं?
1: जी, सोयल हेल्थ कार्ड जो है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, अभी भी चल रही है कुछ जिलों में। इसमें क्या है कि मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच सॉइल लैब में की जाती है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का मात्रा कितना है, फास्फोरस का मात्रा कितना है, पोटाश का मात्रा कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह की भी मात्रा कितना है। तो किसान के खेत की मिट्टी जब लैब में जाती है उसका एनालिसिस होता है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड पर लिख दिया जाता है कि ये इतना इतना अमाउंट आप मिट्टी में है और आपको कितना एडिशनल फर्टिलाइजर देना है। वो फर्टिलाइजर से दे सकते हैं आप, चाहे मैन्योर से दे सकते हैं। तो इससे किसान को अपने खेत के वास्तविक स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है, उसके अनुसार उस प्रकार की फसल उगाता है, जिससे कि अनावश्यक आर्थिक लाभ, आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता है किसान को, साथ साथ मिट्टी का हेल्थ भी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। और मिट्टी का हेल्थ पर ही हमारा फ्यूचर का एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत ही जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है।
0: तो डॉक्टर अभिमन्यु जी, हमारे ये जो आज के कार्यक्रम है, इसकी समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो हमें हमारी ये चर्चा यहीं पर समाप्त करनी होंगे। तो आपने आज अपने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आए और गोभी वर्गीय फसलों के बारे में हमारे किसान श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारियां दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के बागवानी विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी के साथ क्रूसीफेरी वर्गीय फसलों की वैज्ञानिक खेती के विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही कृषि संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण अब समाप्त होता है। आपकी सेवा।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनिए वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला नगमा पेश है रेफ्यूजी फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए यह धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म से भी आप सुन रहे थे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, बोल समीर के और संगीत अनु मलिक का। इसी के साथ ही श्रोताओं, वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीन देशों की महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक यात्रा के पहले चरण में आज इंडोनेशिया पहुंचे हैं। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने स्वयं उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी की यह इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वह मेलबर्न पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तीन देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे, जहां वे अपने न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लैक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय सेना की फोर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नीरज शुक्ला ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक से मुलाकात की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति, सीमा प्रबंधन को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के उपायों तथा सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए जा रहे कल्याण एवं जनसंपर्क कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने और नियमित गश्त सुनिश्चित करने पर बल दिया। फोर कोर के जीओसी ने राज्यपाल को कोर की परिचालन तैयारियों, जारी सुरक्षा उपायों तथा सीमावर्ती जिलों में चल रही विकासान्मुखी जन कल्याण गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए तथा अरुणाचल प्रदेश के नागरिक प्रशासन और जनता को हर संभव सहयोग देने के लिए भारतीय सेना की निरंतर प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नाहरलगन के वार्ड संख्या 16 स्थित लांपिया में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड का आधिकारिक उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि डैमसाइड ब्रिज से कंकरनाला तक फैली 4 किलोमीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क एक राष्ट्र एक संविधान के प्रबल समर्थक दूरदर्शी नेता डॉ. मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र तथा जीबी पंत राष्ट्र हिमालयी पर्यावरण संस्थान के उत्तर पूर्व क्षेत्र केंद्र ईटानगर द्वारा संयुक्त रूप से पौधारोपण अभियान एवं वर्गीकरण विज्ञान तथा एंटोबॉटनी के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से हरित पृथ्वी की पहल विषय पर आयोजित वन महोत्सव समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि वास्तविक प्रगति आधुनिकता को अपनाने के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने में निहित है। उन्होंने युवाओं से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण एवं संवर्धन का आह्वान किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सामान्य से अधिक तापमान की चेतावनी के मद्देनजर ईटानगर कैपिटल रीजन प्रशासन ने लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है। लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और तेज गर्मी के दौरान अधिक शारीरिक श्रम से परहेज करने की अपील की गई है। शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए ORS, नींबू पानी और छाछ जैसे पेय पदार्थों से सेवन करने की भी सलाह दी गई है। हीट स्ट्रोक की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को तुरंत ठंडी जगह पर ले जाने कर शरीर का तापमान कम करने, तरल पदार्थ पिलाने और बिना देरी के निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने को कहा गया है। प्रशासन ने सभी विभागों को पेयजल उपलब्ध कराने, जागरूकता फैलाने तथा बच्चों, बुजुर्गों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोअर दिबांग वैली

उदित नारायण और साथी कलाकारों के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है क्रिमिथांग तवांग से लोपसांग ड्रामा त्रिंग ड्रामा दिचिन जांगमू पुरपाल हामू पासांग और पेमा वांगदी ने। आप सभी के फरमाइश पर पेश हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत जतिन ललित का।

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो से आन मिलो सजना फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है आनंद बख्शी ने, गाया मोहम्मद रफी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के फरमाइश पर सुनिए धर्मात्मा फिल्म से किशोर कुमार का गाया नगमा। इंदिवार के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला नगमा सुनिए दातारंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा के फरमाइश पर काला बाजार फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया गीत, बोल शैलेंद्र के और संगीतकार एसडी बर्मन।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है नमित तवांग से पेमा लामू, श्रृंग पेमा, उर्गिन पेमा, टाशी जंगू और गेरजुंग ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है सपने साजन की फिल्म से किशोर कुमार और अलका याग्निक का गाया गीत। नदीम श्रवण द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से चंद पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कल नॉटिंगम में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से, तथा इंग्लैंड और नॉर्वे ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गॉफ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और तीरंदाजी विश्व कप का चौथा चरण कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा।

0: तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की एक शानदार उपलब्धि के साथ, जिसने सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया।
1: And it's going to be brought up in not the greatest of ways for England, but Australia will take it. And in the backyard of their oldest foe, at the home of cricket, Australia have not just claimed their 7th World T20 title.
2: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में महिला क्रिकेट के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने आई। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। टीम ने 11वें ओवर तक 70 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। यहां से कप्तान नेट साइबरब्रंट ने फ्रेया कैंप के साथ 5वें विकेट के लिए 55 गेंदों में 80 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ब्रंट 53 गेंदों में 58 रन और कैंप 28 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रही। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में यह मुकाबला जीत लिया। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद बेथ मुनी और फोएब लिचफील्ड ने 67 गेंदों में 100 रन की साझेदारी करते हुए इस अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत कर दी। मुनी ने 49 गेंदों में 64 और लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। एलिस पेरी ने अंत में नाबाद 13 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को उसका रिकॉर्ड 7वां टी20 खिताब दिलवाया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो वर्ष 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में 2026 भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच कल नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से पीछे है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की मैन्स इन ब्लू के लिए यह मैच में बहुत कुछ दांव पर रहेगा। और इस मैच और क्रिकेट के मैदान की ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, कल जब भारतीय टीम उतरेगी नॉटिंगम में तो क्या कुछ दांव पर रहने वाला है इस टीम के लिए?
3: शक्ति, अगर कल भारत ये मैच हार जाती है तो आयरलैंड की तरह ही ये मुकाबला, ये सीरीज भी भारत अपने नाम नहीं कर पाएगी। भारत के पास इस मुकाबले को, इस सीरीज को ड्रॉ करने का ही मौका बस बचेगा। अगर हम बात करें विश्व कप जीतने के बाद से लगातार भारत का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। पहले आयरलैंड से 2-0 की हार मिली, फिर इंग्लैंड से पहला मैच बारिश के कारण धुल गया और दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो अब तीसरे मैच में भारत के पास जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर हम बल्लेबाजी क्रम में बात करें जो कि कल खेल सकती है, उसमें युवा वैभव सूर्यवंशी होंगे जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, अभिषेक शर्मा हैं, ईशान किशन होंगे, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे टीम में हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो टीम बदलाव भी कर सकती है। शक्ति, संजू सैमसन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था विश्व कप में, उसको प्लेइंग 11 में फिर से वापस ला सकती है। लेकिन भारत की असली चिंता बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी है, जिन्होंने लगातार डिसअपॉइंट किया है, चाहे हम आयरलैंड सीरीज की बात कर ले या फिर हम इंग्लैंड सीरीज की बात कर ले। दूसरे अगर टी20 की भी बात करें तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था गेंदबाजी से। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई काफी महंगे साबित हुए थे, जिसके कारण भारत श्रृंखला में पीछे है।
0: जी बिल्कुल, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल टीम की नजर हर हालत में जीत दर्ज करने पर होगी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने जिम्बाब्वे के खिलाफ

0: तीन T20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है प्रशांत। प्रशांत, कप्तानी तो श्रेयस अय्यर के हाथों में है, लेकिन क्या नए बदलाव के साथ ये टीम उतरेगी जिम्बाब्वे में?
1: इस टीम में शक्ति फिनिशर रिंकू सिंह, जिन्होंने विश्व कप खेला था भारत के लिए, उनकी वापसी हो रही। इनके अलावा प्रिंस यादव, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था आईपीएल में। कई ऐसे खिलाड़ी जिनका अच्छा प्रदर्शन था, जो जिनको टीम में शामिल किया गया, जिनमें प्रिंस यादव हैं, यश ठाकुर हैं, अशोक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। वहीं अशोक शर्मा ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की थी आईपीएल में, जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया। वहीं हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। और इसके अलावा अगर इंग्लैंड दौरे पर अगर हम बात करें, तो अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, जिनको मौका मिला है, उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए शामिल नहीं किया गया टीम में। विकेट कीपिंग का जिम्मा जो है वो नए खिलाड़ी प्रभसिमरन सिंह को सौंपा गया, जिनकी तारीफ हमेशा युवराज सिंह भी करते रहे हैं उन्होंने। और उनके साथ विश्व के नंबर एक बल्लेबाज T20 में ईशान किशन को भी टीम में जगह दी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है शक्ति की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को टीम में नहीं शामिल किया गया है। और श्रृंखला की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को ये श्रृंखला खेली जाएगी।
0: जी बिल्कुल प्रशांत, इन तमाम नामों के बीच में श्रोता एक नाम और सुनना चाहते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी सीरीज का हिस्सा हैं?
1: बिल्कुल, वैभव को इस सीरीज में लगातार टीम में शामिल किया गया है शक्ति।
0: तो बिल्कुल उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी वापस अपने आईपीएल की फॉर्म को बरकरार रखते हुए जिम्बाब्वे में भी नजर आएंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा, वहीं सुबह 5:30 बजे अमेरिका की भिड़ंत बेल्जियम से होगी। इससे पहले इंग्लैंड और नॉर्वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
2: इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज सुबह एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लिश टीम ने मैक्सिको को 3-2 से हराया। मैच का पहला गोल 36वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से जूड बेलिंगहम ने किया। इसके ठीक बाद 38वें मिनट में बेलिंगहम ने फिर गेंद को गोल कोस्ट में पहुंचाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया। हालांकि मैक्सिको ने जल्द ही मुकाबले में वापसी की और क्विनोन्स ने 42वें मिनट में मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। मैच के 60वें मिनट में इंग्लैंड को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में बदलकर टीम की बढ़त को 3-1 से कर दिया।
3: England coming again, it's Harry Kane and Bellingham again, 2-2 minutes for England, who are in Mexican dreamland, it's England's King Kane who strikes again for the Three Lions.
2: मैच के 69वें मिनट में राउल जिमेनेज ने मैक्सिको के लिए एक पेनल्टी को गोल में तब्दील किया। इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका और इंग्लैंड की टीम अंतिम 8 में जगह बनाने में सफल रही। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच के 79वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने नॉर्वे की ओर से मुकाबले का पहला और 90वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई।
3: He has nailed it for Norway! Their greatest day! Their mightiest hero!
2: इंजरी टाइम में पेनल्टी पर नेमार जूनियर ने ब्राजील के लिए पहला गोल तो दागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गोल नेमार के करियर का आखिरी गोल साबित हुआ और उन्होंने मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 वर्षीय नेमार के नाम ब्राजील की तरफ से सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में खेले कुल 130 मुकाबलों में 80 गोल किए, जबकि 59 असिस्ट भी किए। 2012 में ओलंपिक में रजत पदक और 2016 ओलंपिक में ब्राजील को स्वर्ण पदक दिलाने में नेमार ने अहम भूमिका निभाई थी। अब क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और फुटबॉल के बाद अब रुख करते हैं टेनिस कोर्ट का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के फ्लोवियो कबोली ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को हरा दिया है। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के टेलर फिट्स का मुकाबला कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्किफ तथा चेकिया के जीरी हेलेका का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। बुल्गारिया के गिग्रोव दिमित्रोव का मुकाबला ब्रिटेन के आर्थर फेरी से होना है। महिला सिंगल्स में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने चेकिया की मारी बोकोजवा को 6-4, 6-4 से हराया, जबकि इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने फिलीपींस की एलेक्सेला को 6-4, 6-6, 6-3 से हराया। इससे पहले कल नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गोफ ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
4: विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में कल कई अहम मुकाबले खेले गए। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोमान सफी उल्लीन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इटली के यानिक सिनर ने जापान के

0: किंतारो मोचीजुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिमेनेस स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1 से हराया, जबकि जॉन लेनार्ड स्ट्रफ ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने हमवतन ईवा जोविक को 4-6, 6-3, 6-1 से हराया। जापान की नाओमी ओसाका ने आर्याना संबालेका को 6-2, 7-6 से हराया। एक अन्य मुकाबले में अमरीकी कोको गॉफ ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनेसिक को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया। यूक्रेन की मार्ता कोत्स्यूक ने अमेरिका की एश्लीन क्रूगर पे 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो विश्व का ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट अब अपने क्वार्टर फाइनल की दौड़ में प्रवेश करने जा रहा है, जहां से इसका रोमांच अब हर दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण की, जो कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा। तो आइए जानते हैं इस चरण में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी फाइनल चरण और अंकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे।
2: भारत के 16 सदस्यीय दल की अगुवाई धीरज बोमो देवरा, कुमकुम अनिल मोहोड़ और ज्योति सुरेखा विन्नम कर रहे हैं। चार चरणों में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप का ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इस वर्ष के आखिर में मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। मैड्रिड मीट में 51 फेडरेशनों के 392 रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाज 7 से 12 जुलाई तक पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोमो देवरा, यशदीप संजय भोगे, नीरज चौहान और अतानु दास शामिल हैं। महिलाओं के रिकर्व इवेंट में सबकी नजरें कुमकुम अनिल मोहोड़, कीर्ति शर्मा, अंकिता भकत और दीपिका कुमारी पर रहेगी। कंपाउंड वर्ग में ज्योतिका सुरेखा महिलाओं की टीम की अगुवाई करेंगी। उनके साथ चिकित्सा तानी पार्थी, पृथिका प्रदीप और परनीत कौर भी टीम में हैं। पुरुषों की कंपाउंड टीम में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु, साहिल जाधव, कुशल दलाल और ऋषभ यादव शामिल हैं। भारतीय तीरंदाजों ने इस वर्ष तीरंदाजी विश्व कप में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो ऐसी टीम जहां के अधिकतर खिलाड़ियों की नजरें होंगी कि किस तरह एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी को और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। और एक और टूर्नामेंट शुरू होने को है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां 8 जुलाई से 5वीं भारतीय ताइक्वांडो पुमसे और पैरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे सिक्किम संवाददाता ने बताया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य से 24 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
3: More than 24 athletes from Sikkim will compete in the 5th India Taekwondo Pumse and Paranational Championship. Sikkim's athletes will participate in a range of events including Freestyle Team Pumse, Junior Team Pumse, Under 17 Freestyle Pumse Female. The team will lead by coaches Ganga Pradhan, Saroj Gurung, Ugen Gurung and Sunil Limbu. Medal winners will be shortlisted for the final India National Camp Selection Trials, with successful athletes earning the chance to represent India at the 2026 World Taekwondo Pumse Championship in Chancheon, South Korea. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashbani News Gangtok.
1: और अब बात करते हैं भारतीय पहलवानों की, खासकर युवा पहलवानों की, जिन्होंने थाईलैंड में अंडर 20 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अपना अभियान 20 पदकों के साथ समाप्त किया। इनमें 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में भारत की महिला टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि भारत की पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने तीसरा स्थान अर्जित किया। महिला प्रतियोगिता के अपने सबसे बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इसमें सामने आई हैं, जिसमें से 10 में से 9 महिला पहलवानों ने भारत के लिए पदक जीते, जिसमें प्रवीण ने 50 किलोग्राम, मुस्कान ने 53 किलोग्राम, काजल ने 76 में अपनी अपनी कैटेगरी के स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि प्रवीण ने उज्बेकिस्तान की शेकिस्ता शोजान रोवा को 13-2 के बड़े अंतर से हराते हुए ये पदक अपने नाम किया था। अगर पुरुषों के फ्रीस्टाइल की बात की जाए तो वहां पर सुमित कुमार लक्ष्मण ने 70 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
3: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
4: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
5: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा

0: चर्चा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में तीन T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।

तभी तभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। चलिए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम मेरी बात, साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम तांगपोक समा कल शाम 5:35 पर। कल शाम 7:25 पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग और रात्रि 8 फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। जी हां श्रोताओं, तो यही थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब समय हो चला है आप श्रोताओं से विदा लेने का। आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे कल दोपहर 2 अंग्रेजी में समाचार के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम कक्ष में उपस्थित प्रसारण सहायक श्री सांगी छोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री न्यूटन बोरा और श्री अच्युत बर्मन, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक श्री हेमंता स्वर्गिरी और सुश्री शिखा डेका के साथ मैं हूं हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। समय रात्रि के 9:16 हुए हैं। श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दें। शुभरात्रि, जय हिंद।